0: पॉइंट पर।
1: ए राहुल तो यहाँ नहीं है।
2: अरे वो भी मिलोगे यहाँ पर नहीं। दो मिनट बाद उसकी एंट्री होने वाली है यार, कहाँ है वो, जाकर ढूंढोगे प्लीज।
1: ओह गॉड, मैं अभी आया।
0: श्रुति श्रुति, राहुल मिला क्या?
3: नहीं